सब छोड़ती मैल छोड़त कमाई, सब कीमत मैल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी दिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया।

जल नानक तिन कुरबान। हर त्यावहि हर त्यावहि दुध जी, से जन जुग मह सुख वासी। से मुक्त भय जन हर त्याया जी, तैन टूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, से हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

हे वेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई रूपा पांडज धीरज से ओत भुज खान बहोर रच दिनी कहूँ भूल राजा हवा बैठा कहूँ सिमट भयो।

ते पवत सतगुर रहे अपर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु।

हे भाई तू सदा कायम रहने वाला हर नाम धन गुरु की शरण पैसे हासिल करो। परमात्मा वालों वर्ती रजा अपने भले वास्ते जान के सहारो।

हिंदुस्तानी सुल्तान की तारा तीन सौ बवंजा है। गवर्नमेंट चलाउण दे सारे हक अपने हाथ विच लै लै। इस षडयंत्र विच उसका सब तो बड़ा सलाहकार भी उसका छोटा पुत्र संजय गांधी, जिसने अगला प्रधानमंत्री बनाया।

0: 6 जून की रात 11 बजे के करीब सानू मिलिट्री कैंप विच ले जाया गया। साढ़े पहुंचने तो थोड़े समय बाद ही गोलियां चलन की आवाज सुनाई दी। असी सारे वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पे। असी सारे इहो सोच रहे सी कि कंपलैक्स अंदर तो बच गया सी, पर हुण नहीं बचते। पर दूजे दिन 7 जून सवेरे पता लगा कि दो नौजवान कंध टप रहे सन, उन्होंने गोलियां मार के मार दिता गया है।
1: पावे बहुत कार्यकारी सेवादार अपने बचाव के हर वसीले की भाल विच सन, पर

गुरु के प्यारे साथ संग जी, अपनी रचना करो पवित्र, सारिया संगता सा माए पाए प्यार ना बोलो, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। हुणे हुणे आपां कथा का आनंद मान रहे सी, हुण आपां ढाडी सिंघां पासों ढाडी राग दे राहे अपना इतिहास गुरुआं दा इतिहास है जेड़ा उह ढाडी सिंह पढ़न लगे है। आओ आपां सुबह दे दीवान वे ढाडी सिंघां पासों सुन रहे सी, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, जीनो बड़ो कलो में साका, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह अपने घर दिया सारे जिम्मेवारियां सन, मां माता नानकी जी उन्हां नूं सतगुरु ने आख्या, मां मैं चलिया दिल्ली नूं ते मैनू तू आशीर्वाद दे, मैं धर्म जिहड़ा ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਜਾਮੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ सीधे चले गए हन सतगुरु, प्रचार करदे करदे प्रचार करदे जी सतगुरु, ये पै काहू को देत न पै मान आन, सतगुरु कहंदे जे पाए किसे तो डरना नहीं ते ना ही किसे नु डारा जेड़ा ओ देना है। महाराज आगरे पुजे है जिथे एक अजाली बंदा सी, ओ सतगुरु नु उड़ीक रिहा सीगा, मन बच्चे विचारा करता से महाराज दे बहुत सारे पैसे है जेड़े उन्हों दा अनाम है जेड़ा सरकार ने रख दिता भी जेड़ा उन्हों दे दस पाओ गुरु तेग बहादुर साहब जी उस भारी अनाम है जेड़ा दिता जाऊगा। जे किते मेरी नजर पै जान ते मैं उन्हों नू फड़ा देवा, मेरे लड़की अजी अजड़ी जवान है, मैं उसका निकाह कर देवा, जे पैसे मिल जाने। सतगुरु ने उस दे कहने मन दे इच्छा से जेड़े ओवे पूरे किते, सतगुरु एक बाग विच जाके बैठे हन, ते जेड़ा बाग से खर चुक सी ते ओदे विच हरियावल आ गई है। अजाली बंदा सी उसने आके नमस्कार कीती, मन दे विच विचारिया भी ए तां कोई औलिया बंदा है, ए खर सुक सी सारा बाग हरियावले दे विच है नहीं सीगे, ते जदों दे आ के बैठे हन ए हरियावल पैदा हो गई है। सतगुरु ने उस नूं कहिंदे इक मुंदरी देती ते इक दुशाला देता भी, जा भाई जाके बाजार दे विचों मठियाई कोई ओ लिया, ए लैण वास्ते गया, जदों जाके मंदरी बड़ाई हलवाई नूं, इस नूं वेख के शक पैदा हो गया, ए गरीब बंदा भेडां बकरियां चारन वाला बंदा, ए कीमती नग वाली मुंदरी आ जिहड़ी इहदे कोले कित्थों आ गई, चोरी कीती होवी, कीमती दुशाला ए कित्थों आ गए है। इसने थाने दे विच्चे विच्च खबर कर दित्ती, अजाली तों पुछिया गया ए कित्थों लियांदे है, कहिंदे थानेदार नूं पता लग गया कि इह तां उही गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज है जिन्हां दी टोल दे विच भाल विच सरकार है जिहड़ी इह फिर रही है। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज इत्थों कहिंदे ने सतगुरु नूं, इत्थों महाराज नूं धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज नूं गिरफ्तार करके दिल्ली विच पहुंचाया गया, जिथे औरंगजेब बादशाह महाराज दे सामने आके खड़ो गए है, कहण लग्या सच्चे पातशाह दे इत्थे इक जंगल दे विच दो

0: दुश्मन दूर करके किसे वास्ते मौत मन दूर करके गीत आवदी मौत दे कौन लगा ओ
1: वास्ते मौत मन दूर करके

गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। सब संगत बोला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह किसी का धर्म बचाने वास्ते महाराज दिल्ली विच गए हैं। औरंगजेब बादशाह जरा उन्हें बड़े हंकार के नाम सतगुरु ने

0: मेरे बहुत मैं कलमा पढ़ना नहीं मेरे बहुत
1: आ जड़े कविता पढ़े जा रहे है भाई मतीदास कह रहे मैं कलमा नहीं पढ़ना गा ये कविता कविता बनाने वाले भी जानते हैं ना रूप से सिंगल है जरा उस हिसाब न बने है पांच छे सिंगल है कविया ने रखी है पुराने ने वो पढ़ के जो कविता बनाई जाए क्योंकि वो दसते हैं सिंगलों वाले भी जेडे सब चक्कर होंगे जो कविता में लग जाए कविता जेडी वो वसते हैं जरा दिल्ली में ढाडी दरबार होया सी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज श्री जी गुरुदेव गुरुदेव उस विच एक कविता जी जेडी जज बनाए थे उन्होंने ये कविता दो बारी सुनी मेरा कहने का भाव है कविता के अक्षर है जेडे एक रूप से पिंगल के हिसाब न बने हैं आओ आप ढाडी सिंह पास सुन रहे हैं भाई मतीदास गुरु का कितना प्यारा सिख जी कहना मौत मेरी झोली में पा दो मैं कर्मा नहीं पढ़ना।

ऐसा भी हो सकता है। हुण खिमा करना, इत्थे हजारां दी तादाद विच संगतां बैठियां ने, की पता किन्ने क संत बैठे होणगे इत्थे सतनाम, क्योंकि बाणे दा नाम संत नहीं, साधु जिन्हें मन सद्या। नौ द्वारे साध साध कहाया, द्वारा एक नहीं साध्या, साधु किदां बणे? साध नाम निर्मल ताके कर्म। साध कौन है? जिदे कर्म निर्मल हन, जिदे कर्मा विच सच है, जिदे कर्म उज्जल हन, ओ ने। सो साध संगत बड़ी औखी है मंजिल। लोग कहिंदे ने साधु पर डरीदे महाराज कृपा ही रखे।

सदा सदा प्रभु कहो बलिहारे नानक सद कुर्बान ऐसा गुरु वडभागी पाईए जित मिले प्रभु जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आईए बहुड़ जोन ना आईए गुर चरणी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाईए हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस परतापै हर हरे हर गुण निदे हर संतन कै वासे आए राम संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा धारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर

हर अराधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल मही अलपूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह बिकार नाथे प्रभ नेर हूं ते नेरा नानक को प्रभ कृपा कीजै नेत्र देख है दर्श तेरा कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए है अविनाशी राम सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिए काल की फांसी राम कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी

पाला, सब किश तेरा तू प्रभ मेरा, मेरे ठाकुर दीन दयाला। मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर, संत संग मन जागा, कहो नानक प्रभ कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा। सूही महला पंजवां, हर जपे हर मंदर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, सगले पाप तजावे राम। हर गुण गाए परम पद पाया, प्रभ की उत्तम बाणी, सहज कथा प्रभ की आत्मीठी, कथी अकथ कहानी। भला संजोग मूर्त पल साचा, अब चल नीम रखाई, जन नानक प्रभ भये दयाला, सर्ब कला बन आई। आनंदा वजह नित वाजे, पार ब्रह्म मन बूठा राम, गुरमुखे सच करनी सारी, बिनसे भ्रम भय झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख बखाणी, जस सुन सुन मन तन हरिया, सर्ब सुखा तिस ही बन आए, जो प्रभ अपना करिया। घर में है नवनिध भरे।

प्रभ शतरपति कीनी सगली तपत बनासी राम दुख पाप का डेरा ढाठा कारज आया रासी राम हर प्रभ फरमाया मिटी बलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याई सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल महील सोई जन नानक प्रभ की सरनाई तिस बिन अवर ना कोई मेरा घर बनिया बन ताल बनिया प्रभ परसे हर राया राम मेरा मन सोहया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाईया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वाधाइया करी नदर स्वामी सुखागामी हलत पलत सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिनता

विथि अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर, लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी, जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम त्याया नवनिद सिद्ध रिद दीने करते, तोट न आवै काई राम, खात खर्चत बिलशत सुख पाया, करते की दात सवाई राम, दात सवाई न खुट न जाई, अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे, दुख ना नेड़ आया शांत सहज आनंद कनेरे, बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के, अचरज जिस वड्याई राम, जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या विचारा राम, भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम, गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी, जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी, हथ सठ तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा, पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा, गुण निधान मेरा प्रभ करता,

गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अनलिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

पूर्ण भगवान ने अवगण को ना चितारी, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले, घट घट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हो बिस्म भई जी हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी हो चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, किस जे वड़े अवर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल थल महियल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पव जल उतरे पारा, नानक सरन पूर्ण परमेश्वर, तेरा अंत ना पारा वारा, हो निमख ना छोड़ा जी, हर प्रीतम प्राण आधारू।

आई श्रुत सिमरत गुण गावे हैं करती सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा निज स्वामी वड भागी हर हर

जिन्नी गुर की सिख सुनी जोत सभावै सोत ही है इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सिहत साजियन बहु भित संसारा तेरा हुक्म न जापी केतड़ा सच्चे अलख अपारा इकना नू तू मेल लै गुर शब्द बीचारा सच रते से निर्म

जुग चारे सब भव थकी किन कीमत होई सतगुर एक विखालिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाही है करता करे सो होई सलोक महला दूजा जिन्ना भउ तिन नाहे भउ मुझ भउ निभव्या नानक एहो पटन।

कौ मुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हम मार मन निर्मला हर नाम पुरधारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिन पिए तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्चिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन फिर मन मानिया तो बनिया शिंगार किया तो प्रवान है जा सहो धरे प्यार पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले धन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा धन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिया सोए पौड़ी भै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजै भै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग स्यो हो मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ पाओ।

गुरमुख सेवा खाएं पवे उन मन तत कमाहु मसक्कत लहो मजूरियां मांग मांग खसम दराहु नानक पुर दरवे।

तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ियत होर बाहर धोती तूमड़ी अंदर वेसने कोर साध भले अन नातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग धंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस इहो मन भावदा।

घर आए वजी वधाई सच नाम की मिली वडियाई महला पहला राती होवन कालियां सोपे दा सेवन देहु बग्गा तपै

रतन जवाहर माणिक जेयक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नावर खाए कहे जस कीरत जग ले जे तैसो नजर न आवई ता बात न पूछे के कीटांदर कीट कर दोषी दोष करे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तैस गुण कोई करे।

आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे बखियाण आखे ब्रह्मे अखे इंद आखे गोपी तय गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे गीते गीते बुद्ध आखे दानवे आखे देव आखे सुर नर मुंडन सेव किते आखे अखण पाही किते कह कह उठ उठ जाए ते किते और करे दाख न सक कई कई जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने सचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सरगावा रंगावार सो दर कहा सो कर कहा जित मैं सर्व संभाले वाजे नाद अनेक संखा किते वावण हारे किते राग भरी सो कही अन किते गावण हारे गावे कहुन पौन पानी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारी गावे जित गोबिंद लिख जाने लिख लिख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी गावे इंद्र दासन बैठे देवत्यां धर नाल।

पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पाया ले गावन रतन पाए तेरे आठ तीरथ नाले गावे जूद महाबल सूरा गावे खाणी चारी गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदन गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं जतन आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर करू जिन सी माया जिन पाई कर कर वेख कीता अपना जब तस दी वड्याई जो तस पावे सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म बत चोली ध्यान की करें बेपूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जी तय जग जीत आदेश तस आदेश आद नील नाद नाथ युग युग कोवेश भुगत गया हुंदा भंडारण ਘੜ ਘੜ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਗੀ ਰਿਧ ਸਦੇਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਯੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ ਲਿਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਸ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਨਾਥ ਯੁਗ ਯੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਝੱਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, जिसे नाद विनोद गूढ़ आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, जिसे काट कड़ी है बहुत अनूप, दांकियां गल्लां कथियां न जाए, जे को कह पिछे पछताए, तिथा कड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथा कड़िया सुरस दान की शुद्ध, कर्म खंड की बाणी जो होर, तिथा और न कोई होर, तिथा जूद मां बल सूर, तन मराम रहे या भरपूर, तिथा सीतो सीता महमा माए, दा के रूप न कथने जाए, ना हो मरह न ठगे जाए, जिनके राम बसे मन माए, तिथा भगत वसै के लोग करे आनंद सचा मन सोए, सारी खंड।

नमास्तास्तु देवाय नमास्तंग अपेवाय नमास्तंग जन्मे नमास्तंग सुभन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमास्तास्तु दयाले नमास्तंग वरणे नमास्तंग मरणे नमास्तंग नमो काल काले नमास्तास्त दयाले नमास्तंग वरणे नमास्तंग मरणे नमास्तंग जरारंग नमास्तंग करतारंग नमो सर्वतंदे नमो वस्ता बंदे नमास्तंग नरसाके नमास्तंग नरभाके नमास्तंग रहीमे नमास्तंग करीमे नमास्तंग अनंते नमास्तंग महांते नमास्तास्तरागे नमास्तंग सुभागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद तव प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं जू हैं पू हैं लेख हैं पेख हैं नाम हैं काम हैं अदे हैं पेह हैं जीत हैं पीत हैं त्रमान हैं रदान हैं त्रिवर्ग हैं सर्ग हैं नील हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म है वर्ण है भूत है पर्ण है अगंज है पांज है जूझ है चांज है अमीक है रफीक है तंद है बंद है निर्बूज है सूझ है अकाल है अजाल है अल्लाह है जहा है अनंत है महंता लीक है निरसरीक है निर्लंब है सांब है गम है जम है अपूत है।

आत्मात्म जात जाकर जन्म मरण विहीन जकर बकर भिर चतर जाकर मानी प्रतीन लोक चौदह के विखय जग जाप जह जाप आद देव नाद मूर्त थप सब जय थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सूरज उम पव कर्ण पंजन हारु कालहीन कला संयुक्त कल प्रख देश धर्म धाम सुपरम रहत बुदल कबेश अंग राग नंग जाक जात बाद नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमी कानो सत एक पुरख दूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंगनात्मिक पुरख पारु सर्वलायक सर्वकायको सर्व कुब्रत पारु सर्वगंता सर्वहंता सर्वतियन पेख सर्वशास्त्र न जानी जय रूप रंगर रेख परम वेद प्राण जा कह नित भागत नैत कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार छंद तव प्रसाद गुण गण उदार महिमा पार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्जन नाशा जन बाह शान शान राजान राज पानन पान।

अनुभूत अंग अपाप अंग अदमित पार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम आत दुद पर चांड मित गद अखंड लिश कर्म दृश धर्म सर्व प्रणाड आन दंड पाडे चाचरी संग तब प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारे पारे हरियं करियं नामे कामे भजंग प्रयाद संग चतर जगर करता चतर जगर हरता चतर जगर दानी चतर जगर जानी चतर जगर वर्ती चतर जगर भरती चतर जगर बाले चतर जगर

ना सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय जन्मंग जाय न चित्र न मित्र पर हम पवित्र प्रतिसा दिशा दृश कृष भगवती शांत दल प्रसाद करते के आशज देश है के अभिज बेस है के अभिज लोक है के आदत शोक है के अवधूत वर्ण है के विभूत करण है के राजंग प्रभाएं के धर्मंग तुझाए के अशोक वर्ण है के सर्वा वर्ण है के जागतंग कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्राह्मण स्वरूप है के अनुपान रूप है के आदो देव है के आभ देव है।

हे सर्वत्र देशाय के सर्वत्र भेषाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र साजाय के सर्वत्र दीनाय के सर्वत्र लीनाय के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र भेषाय के सर्वत्र कालाय के सर्वत्र पालाय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र द्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र थापे है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीमय के पुख परम फहीमय के अकलो लाम के साहब कलाम है के उसनो बजूंगा तमाम दरजू है मेसुर गुलाम है सलीख तुम धाम है गनी वोल सकाता गरी वोल बरा साहब लंदलो मकान है जमीन वाल जमान है तमीज वाल तमाम है रुजू वाल नजान है हरी फल जीमा रिजा की यकीन है नहीं फल तरंग है पेद है पांग है अजीव जो निवाज है गनी मुल खराज है निरोगत स्वरूप है द्रमुगत बभूत है प्रभुगत प्रवाह है सुजुगत सुधा है सुदैगुण स्वरूप है पेदी अनूप

बैतुल निवास है के सर्वलोक वन है मे सुंदर वन है तमा बोल तमी जय समस्त लजी जय परम परमेश समस्त लदीश है आदि सुल लेखा मे सुल पेखाए जमीन उल जमा है मई गुल माह है क्रीमल कुमाल है गजरो जमाल है गज लंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अज विश्वरूप है कि मितो भूत है कि मितो बसा है कि आत्म प्रभा है गज लंग नांग है कि मितो पांग है मधु पार छंद प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मधाम हर भरिया गांज हर नर पर पांज गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड वर नर अमंड अन पवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुधाम अंश जे अंग आसन अपंग उपमा पार गात्मित उदार जल थल मंड दिश विष अपंड जल थल महंत दिश विष बेअंत अनपवन आस त्रितर दुरास आजन बाह कैसदाह ओंकार आदि कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरुवर अकाल कर कर प्रणाम जज चरण नाम अंश जिगात जज न बात

ब्रह्मंड सै खल खंड सै परते पर है करुणा कर है जप जप दप दप है कृत कृत अमृत अमृत है अमृत अमृत है करुणा कृत है कृत कृत तरणी कृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृत कृत अमृत अमृत है जप कृत अमृत अमृत है निर्नायक है खल कायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पव पंजन है हर गंजन है रपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारि नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह धाम सिंह शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग बपुते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके पंगी स्वरूपे अनंगी अनामे दर पंगी दर काले

ब्रह्मा तेजो नियमो नहीं न राग न रंगे न रूपे न देखे अकर्मं अपर्मं अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद निवासल प्रणामे समातल प्रणासे अगंजलो नामे समातल निवासे नरकामं बभूते समातल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं बभूते सदा सच्चिदानंदो सतरंग प्रणासी क्रीमलोक निंदा समातल निवासे अजैब भूते गजैब गनि में हरियं करियं करिम रहि में चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपंगं बभूते चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्व

श्रावक सुद समूसदान के देव प्रयोगा जो जदी के सूर सरार्दन सुद सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा ते एक रति बिन एक रति के मातिम दंग जर हर संग अनूप दंग सुरंग सवारे गोड सुरंग रंग से गुरु पौन के गौन को जात नवारे पारी बजान के बहु बली बजने आवसी सना जात बिचारे एते पाए तो कहां पाए भूपत अंत को नंग ही पाए पदारे जीत फिर सब देश दुस्थान को बाजत ढोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारे ऊत भवैख भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे सरी पद सरी भगवान भजे गने अंत को अंत के दाम सुधारे तीर्थ नान दयद मदान सुसंजम नेम अनेक बसेखाए वेद पुराण कदीप पुराण जमीन जवान सुबान के पेखाए पौन हार यदि अवतार सब सब चार हजार के देखाए सरी भगवान पजेवन भूपत एक रति बन एक न लेखाए शुद्ध सुबहादुर अंत दबार सुसा सुनादुर जान दलेंगे पारी गुमान पर मन मैं कारु पर्वत पंखाले नहालेंगे तोर हरी नमरोरम वासन मातिम दंगन मान मलाएंगे सरी पद सरी भगवान कृपा बैनु त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बटे पर यार बचारे सर की दार बछैया तोर तदेश मलंद मवासन माते ज्ञान के मान मलैया गड़ गड़ान को तोड़ नहार सुबात नहीं जग चार लवैया साहिब सरे सब को शरणायक जाच का नेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साचर भूत भवेख भगवान जपेंगे जीव जते जल में थल में पल ही पल में सब थाप छपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात तो न पापन के वो पुंज खपेंगे साध समूह पर सन फिर जग सदर सब अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निरा तब जंतर लोक राज करेंगे गोट स्नान गजा दिख दान अनेक सो अंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सजी पात अंत फसे जम पास भरेंगे जे नर के श्री पद के परस पाग ते नर फिर न दे करेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो न हाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोग गए ऊपर लोग गवायो बास की बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैठ बतायो।

और राज दीन नहीं। कहूं फूल राजा हवा बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाई चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार या सिख संग करो, दोटिये ते उठ बदत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे आस तुझ तब शरणी परे, दिन के दोष दुख तब मरे, पुरुख जवन भग परे तिहारी, दिन के तुम संकट सब टा।

था, होली मंडल का न रचियों का तो कुछ धन कमाया, होली दुनिया छोड़े बंदरा भाई छोड़ा गया, दूर दृष्टि भी अगला में जुड़ा जुड़ा गया।

दान महिंदा कई भाग्य मिला समस्त कुलाइया पूरा लाल सुखिया हरे एक मन अर्थ कुलाइया भाग्य में हो पाइया देवे ही तार कमैया दे हुआ खुद।

वंदना हर वंदना गुण गाव गोपाल राए राव। वड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण

हर के जानो सतगुर सतपुरुखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोह कौ राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीरत हमरी रह रास राव हर जन केवट पाग वडेरे जन हर हर सरदार प्यास हर हर नाम मिल त्रिपता सै मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आई दृग जीवे दृग जीवा जिन हर जन सतगुर संगत पाई जन तुर मस्तक लिखया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राव गुजरी महला पंजवा काहिरी मन चितवा उद्दम जा हर हर जियो परया सैल पत्र मैं जन तो पाई दांका रिजका गय कर तरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ठ हरिया राव जनन पिता लोक सतबनिता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजको संभाही ठाकुर काहि मन पौ करया उडे उड़ा वैसा कोसा तस बाछे बजरे शरिया तिन गवन खिलावे गवन जुगावे मन में सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर दल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पार हवरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख को ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम

कृपा जल दे नानक सारंग को हो जाते तेरा नाही वासारा। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर ब भरिया मल साधु खंडल खंडाई। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लै मंडल मंडाई। कर साधु अंजलि पुन वड्डा ही कर डंडाओत पुन वड्डा ही राहु साकत हर साधन जानिया तिन अंतर हम मैं कंडा ही। ज्यो ज्यो चलै जुब दुख पावे जम काल सह सिर डंडा ही। हर जन हर हर नाम सुमाणे दुख जन्म मरण भव खंडाई। अविनाशी पुरख पा परमेश्वर बहुशोभ खंड ब्रह्मंडाई। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख बड़ बड़ाई। जन नानक नाम अधार टेक है हर नाम ही सुख मंडाई। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवान करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत डहल की वेला। इहां काट चलो वरला आगे बसन सुहेला। औद घट है दिन सरहणारे मान गुरमिल का सवारे राव। ए संसार विकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाई पिया भय रास अगत कथा तिन जानी। जा को आय सोई बिहाज वर गुरदे मन बसेरा निज कर महल भाव सुख सहजे बोर न होई गो फेरा। अंतर जामी पुरख

मुखागर विचरे तपित विचर जोगियां तीर्थ गमन करे कट कर्मा के दुगणे हैं पूजा करता नाय रंग न लगी पार ममता सरपण न के जाए राज मिलक सिकदारियां रस को गुण विस्तार बाग चहावे सोहने चले कुमार रंग तमाशे बहुविधि चाय लग रहा जितना आयो पार ममता सर्प की जोन गया बहुत तनाट चार वंत सोभा निर्मल की रीत मात पिता रुत पाइना राजन संग प्रीत लचकर तस कर कस बंद बंद जियो बंद जियो जियो सबली कीत चितना आयो पार ब्रह्म ता खर सत प्रीत काया रोग काया रोग न सिद्धर केश न किस काड़ा सोग मितना विचित तिस अनच भोगे भोग सब किश की तो न अपना जिये न संतरिया चिता आयो उस पार ब्रह्म जम कम करवा परिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग ज्यो ज्यो वधाइए त्यों त्यों सुहार त्यो रंग दोहा सिरिया का खसम आप बना दूजा थाऊं सतगुर तुठे पाया नानक सच्चा नाऊं श्री अग महला पंजवा घर पंजवा जानू नहीं पावे कवन बाता मन खोज मार्ग रहाओ ध्यानी ध्यान लावे ज्ञानी ज्ञान कमावे सब के नहीं जाता भगवती रह तुजुगता योगी कहत मुक्ता सब सी तब राता मुनि मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी दास राता भक्त नवे प्रकारा पंडित वेद पकारा गृहस्थी गृहस्थ धर्माता एक शब्दी बहु रूप अवतूता कापड़ी को तेजता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक न देवे प्रदर्शा एक मन ही गया मन ही ज्ञाता घर न कहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उक्त पावा त्यागी सन पावा नान गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिदाग महला पहला कर तीजा जोगी अंदर जोगियां तू भोगी अंदर भोगियां तेरा अंत ना पाया सुरग मशियो हमवारी हमवार ने गुरबान तेरे नाम नो रहाओ तू तो संसार पाया सिरे सिर धंधे लाया वेखे किता अपना करतबित पासा ढाल जियो प्रगट पहाड़े जापदा सब नावे नो परतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर को बल जाइए जित मिलिए पंगत पाइए सुर नर मुंडन लोच दे सो सतगुर दिया बजाए दियो सतसंगत कैसी जानिया जिते एको नाम बखाणिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बजाए दियो जागत परम पलाया आपो तो दुखवाया प्रताप लगा दोहागणी फगता भाग जिन्ना के नाए दियो दुहागनी क्या निशानियां खसमो पुथियां फिरे निमाणियां मैले वेस तिना कामणी दुखी रहन बिहाए जियो सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे क्या अपनी आपे लय मिलाए जियो हुक्म जिना नो मनाया तिने अंतर शब्द बताया सहियां से सुहागनी जिन सह नाल क्या जियो जिन्ना पाने घर अस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिलिए फल पाया जिन विचो है कर न चुकाया गुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मुश्किल आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरे भक्तों दे दे समाणिया सुख सेवा अंदर रखिए अपनी नदर करे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिलिए नाम बखाणिए सतगुर बाज न पायो सब सच्ची गर्म कमाए हो सतगुर विटो कमाया जिन भ्रम भूला मार्ग पाया नदक करे जे अपनी आपे ले रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करते आप लुकाया नान गुरमुख प्रगट होया जा को ज्योति ज्योत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने खसम की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब संयम करे सियाण पा मेरा प्रभ सब किस जानदा प्रगट प्रताप बरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण विचारिया प्रभ अपना बिद समारिया कंठ लाए कह रखियन लगे न पत्ती वाओ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिये इच्छड़ा फल पाया सा पाशा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाउ जियो तो आपे आप पाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस भावे तिथे बजाया गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा

फिरकर अपने गृह में है आया। जो लोड़िंदा कोई काया तृप्त घाय रहिया है, संतो गुर अनुभव पुरख दिखारिया। जियो आपे राजन आपे लोगा, आपे निर्वाणी आपे सोगा, आपे तख्त बह सच न्यायी, सब चूकी कूक पुकारिया। जियो जिहा डिठा मैं ते हो कहिया, जिस रस आया जिन के दिलहिया, ज्योति ज्योत मिली सुख पाया, जन नानक एक सारिया। जियो माज महला पंजवा जित कर पिर सुहाग बनाया, चित कर सचिए मंगल गाया, आनंद विनोद चित कर तुम्हें, जो तन संत सिगारी। जियो सागुणवंती सा बढ़तागण, पुत्र वंती सीलवंत सुहागण, रूपवंत सा सुगढ़ बचिखण, जो तन संत त्यारी। जियो चार मत साई प्रदान, सब सिंगार बने तिस ज्ञाने, साकुलवंती सा सद राई, जो फिर कह रंग सवारी। जियो महिमा तिसकी कह न जाए, जो फिर मेल ले अंग लाए, फिर सुहाग वर अगम गोचर, जन नानक प्रेम सधारी। जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे, पांच पांच बन बने बगाहे, निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है। जियो आन मिलावे जियो, खरसा सदबिचरत मुख ज्ञाना, पूजा तिलख तीरथ इत नाना, निगली कर्मा संचौरासी, इन मह शांत ना आवे। जियो अनेक बारख किए जप तापा, गवन किया धरती परमाता, एक छिन हृदय शांत नावे, जोगी बहड़ बहड़ उठ तावे। जियो कर कृपा मुल साल मिलाया, मंथन पीतल तीरज पाया, प्रभव नासी बसिया कच पीतर, हर मंगल नानक गावे। जियो माज महला पंजवा पार दम अकरम सर देवा, अगम गोचर अल सतेवा, दीन दयाल गोपाल गोविंदा, हर त्याग हो गुरमुख गाती। जियो गुरमुख मसूदन सारे, गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे, दयाल दमोदर गुरमुख पाइय, होर तिते ना पाती। जियो निरहारी के सब निर्वैरा, कोट जना जाके पूज है पैरा, गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई, भगत एकाती। जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा, वटसम रथ सदा दातारा, गुरमुख नाम जपिए तित करिए, गत नानक विदली जाती। जियो माज महला पंजवा कहिया, करना दिता लेना, गरीबा नाथा तेरा माना, शब्द सब किछ तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत कौबल जाई। जियो पाने उजड़ पाने राहा, पाने हरगुण गुरमुख गावाहा, पाने परम पवे बहुजुनी, सब किछ तिसर जाई। जियो ना को मूर्ख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगम गोचर जयंत अताहा, तेरी कीमत कह ना जाई। जियो खाल संतंती देहो प्यारे, आए ब्याह तेरे द्वारे, दर्शन तेसर मन आखावे, नानक मिलन सुपाई। जियो माज महला पंजवा दुख सदे जहाँ दिस करे जावे, भूख ब्यापे बहु विधि सावे, सिमरत नाम सदा सोहिला, जिस देवे दीन दे अल्ला। जियो सतगुर मेरा वड समरथा, जाए समाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हो पीरा, आप करे प्रत पाला। जियो बारक मांगी हो सब कुछ मंगा, देंदे तोट नहीं प्रभ रंगा, प्यारी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गो पाला। जियो हो बलिहारी सतगुर पूरे, जिन वेदन जिन बंधन काटे सगले मेरे, हिरदे नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसाला। जियो माघ महला पंजवा लाल गोपाल दयाल रंगीले, गैर गंभीर बेअंत गोविंदे, उच असा बेअंत स्वामी, सिमर सिमर हो जीवा। जियो दुख भंजन ने दान अमोले, निरपो निरवैर असा अटोले, अकाल मूर्त अजूनी संभव, मन सिमर ठंडा थीवा। जियो सदा संगी हर रंग बपाला, ऊंच नीच करे तरपाला, नाम रसायण मन तरपतायण, गुरमुख अमृत पीवा। जियो दुख सुख प्यारे तुझ ते आई, एह मत गुरु ते पाई, नानक ही तार तू है ठाकुर, हर रंग पार परिमा। जियो माज महला पंजवा संतो वेला, जितने सतगुर मिलिया, सफल दर्शन नेत्र देख तरिया, तन मूरत तसे पल कड़िया, तन सो ओसन जोगा। जियो उद्दम करत मन निर्मल हुआ, हर मार्ग चलत परम सगला खोया, नांद दान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा। जियो अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथित है आप वखाणी, गुर कह या सब एको एको, अवर ना कोई होएगा। जियो अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पैनण नाम भोजन किया, नाम रंग नाम चुज समाते।

पै पाई श्रृंगार बनाए सतगुर से सदा सुहागन सच उपदेश मामनिया सद विसारन तिना ठौर न उठाऊ परम पुरम पुले ज्यो सुनने करा काऊ हलत पल तिन्नी तिन्नी दोवे तिन्नी हलत पलत तिन्नी दोवे ना कोई कूड़ गवाए दुखे दुख विहावनिया लिखद्या लिखद्या कागज मस्कूए कोई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखद लिखे है कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चित लावनिया गर्मक सचो सच लिखे विचार थे जन सच्चे पावे मुख द्वार सच कागज कलम मसवाणी सच लिख सच समावनिया मेरा पर अंतर

रहाउ हमें मार बजरक पाड़ खिलाया, नाम मोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्दे नाम न पाए कोई, गुर कृपा ते मन सामने गुर ज्ञान अंजन सचने त्री पाया, अंतर चानन ज्ञान पंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, दर शोभा पावनिया, शरीर पालो शरीर पालन को बार जाए, नाम न लहे बहुत विगा।

सच्चेसब समावने नानद नादर था के तावतर हाए दसमें नज कर वसा पाए उथे आनंद शब्द वजे नै राती गुरमति शब्द समावने बिन शब्द अंत नेरा ना वस ले न चूके फेरा सतगुर हंत कुंजी होर दर खुल खुले बिन शब्द अंत नेरा ना वस ले न चूके फेरा सतगुर हथ कुंजी होर दर खुले नाही गुर पूरे भाग मिलावने गुप्त परगत सभनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाई सला तू गुरमुख मन मसावने माज महला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल न जो हे दुख न संता ते होमे मार बंदर सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावने हो मारी जियो वारी हर हर नाम सुहावने गुरमुख गारे गुरमुख फिर नाचे हर चेती चित लावने राहु गुरमुख जीवे मरे परवान आर्जन चीजे शब्द पहचान गुरमुख मरे न काल न को खाए गुरमुख सच समावने गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विचों आप गवाए आप तरे को सगले तारे गुरमुख जन्म सवरने गुरमुख कदन दुख कदे न लगे लगे शरीर गुरमुख में चौके चुके गुरमुख चो हमें चुके पीर गुरमुख मन निर्मल सर मैल न लागे गुरमुख सहज समावने गुरमुख नाम मिले वड़ियाई गुरमुख गुण गावे सुबह पाई सदा आनंद दे रहे दे राति गुरमुख शब्द करावने गुरमुख अंदन शब्द राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्द भगत करावने वाज गुरु है अंध अंधेरा जिम काल गाठे करे पुकार।

सचरते तिन सचो पावे आपे देना पशुतावे गुरु के शब्द सदा सब जाता मिल सच्चे सुख पावने कूड़क संत दिन मिल मैं न लगे गुर प्रसाद आंदन जागे निर्मना वसे कट भीतर ज्योति ज्योत मिलावने त्रै गुण पड़े हर सत न जावने मूले मूलो भूले भूले गुर शब्द न पछाने मोए व्यापी कि सूजी नाही सूजे नाही गुर शब्द हर पावने वेद पकारे तेरे बदमाया तेरे बदमाया मन मन मखना बूझे दूजे पाया तेरे गुण पड़े हर एक न जाने बिन बूझे दुख पावने जात सपावे ता आप मलाए गुर शब्द सहज दुख चकाए दुख चकाए नानक नाम में की सच्ची वड़ियाई नामो नामो नामो मन सुख पावने माज महला तीजा निर्गुण सरगुण आपे सोई तत पछाने सो पंडित होई आप तरे सगल कुल तारे हर नाम मन वसावने हों वारी जियो वारी हर चख साध पावने हर चाके से जन निर्मल निर्मल नाम ते आमने रहाओ सो नह करनी सो शब्द बिचारे अंतर तत्व ज्ञान हो में मारे नाम पदार्थ नौ निध पाए त्रै गुण मेट समावने हमें करे दिन है कर्मी न होवे गुर प्रसादी हो में खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावने हा सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नत गुरमुख होई स्नान करे सदा दिन राती हमें नैल चुकावने निर्बला निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर्व से हो में मार है नस प्रीत शब्द सचे हर सर्वासा पावने मनमुख सादा मनमुख सदा बग मैला हो में मल लाई स्नान करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द बिचारे हो में मैल चुकावने रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुरु प्रसादी मिटया संदियारा कट चानने आत जानने आवो पाए तै आपे वेखे सतगुर सेवे सोजन लेखे नानक नाम बसे कटि अंतर गुरपा कृपा ते पावने माज महला दीजा माया मोह जगत सुभा।

माया मोहि जलाई सो हर सिंह जितलाई हादर मैली शोभा पावनिया रहाओ देवी देवा मूल है माया सिमरत सास जिनो पाया काम क्रोध पसरिया संसारे आए जाए दुख पावनिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जत सत संजम सच कमावे गुर पूरे नाम ध्यावनिया पेरड़िए तन परम पुलाणी वी दूजा लागे फिर पिछतानी हलत पलत देवे हलत पलत दोवे गवाए सुपने सुख न पावने पेरड़िए तन कंस संभाले गुर प्रसादी वेखे नाले करके सहज गए रंग राती शब्द सिंगार बनावने सफल जन्म जिन सतगुरु पाया पर दूजा पाओ गुर शब्द जलाया एको रावरिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावनिया सतगर ना सेवे सो काहे आया तरग जीवन व्यथा जन्म गवाया मन मुख नाम चेतन आवे बैन नामे मोह बो दुख पावनिया जिन सिष्ट साजी सोई जाने आपे मेले शब्द पजाने नानक ना मिलया तन जन को जंतर मस्तक लेखे लिखावने माज महला चौथा आग पुरख परंपरा पे आपे थापे थाप थापे सब मैं वरते एको सोई गुरमुख सोभा पावने वारी जियो वारी निरंकारी नाम ध्यावने किस रूप नरे

जैसों तुठा सूत तुद ब्याई साजन का मंत्र कमाए आप धरी सगल कुल तारे तिस दरगाह थकन पावनिया तू बड़ा तू ऊच ऊचा तू बेअंत तुम ऊच ऊचा हो गर्मा हो करमानी तेरे वंजा नानक दास दसावनिया माज महला पंजमा कौन समुक्ता कौन सुजुगता कौन सज्ञानी कौन सभक्ता कौन सगरी कौन सदासी कौन सकुमत पाए जियो किन विद बांधा किन विद झूठा किन विद आवन जावन टूटा कौन कर्म कौन नहकर्मा कौन सुखे कहे जियो कौन सुखिया कौन सुदुखिया कौन सनमुख कौन सुदे मुखिया किन विद मिलिए किन विद बिछड़े ए विद कौन प्रगटाए जियो कौन सुखर जत गावत रहता कौन उपदेश दुख सुख समसहता कौन सुचार जिस पार ब्रह्म त्याए किन विद कीर्तन गाए।

मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा नीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन वरना जानने जिसको तू परम पया सहाई तिस तक्ति वावन लगे काई तू सैर सन सुखदाता शरण सुखदाता सत्संगत जप प्रगटावनिया तू ऊच था पर मोला तू साचा सैवदा तेरा गोला तू मीरा साची ठुकराई नानक बल्ब जावनिया माज महला पंजमा कर दूजा नित नित संभालिए मूल न मन वसारिये रहाओ संता संगत पाइए जिस संता संगत पाइए जित जम के पंथ न जाइए तुसा हर का नाम लै तेरे कुल न लागे गाल जियो

मन मंदे पर अवगाया अवगाइए ए रस भोगन पातशाहिए पातशाहिए मंदा मूल न उपजो तर सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्म का फल पाया जन्मे का फल पाया मन पवंदा कंत हर तेरा फिर हुआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया तै पंजन की शरनाया शरनाया लाए अंचन नानक तारियन जिता जन्म पार जियो इकोंकार सतगुर प्रसाद माज महला पंजमा कर तीजा हर जप

चरण से संत साज के सगल मनोरथ पूरे घट घट एक वर्तदा जलसल मैयल पूरे पावना सुन से व्याप वितर संतन की तूरे सब छाई खसमाप हर जप पे ठूरे करते किया तपाव सो।

सो करे सुई जी करण जो प्रभु किते अपने से कहन कहन तन अपन लिया जे मिले विछड़े को रोवन साधु संग प्रापते नानक रंग मानन हर जेठ रंगीला तिसनी जिसके पाग मथन मथान असाढ़ तसंदा तिस लगे हर नान जिन्ना पास जग जीवन पुख त्याग।

तेरा अंत दिता पहना खाओ। उद्दम सोई कराए प्रमिल साधु गुण गाओ, तुझी जाए न सुझी कित कूकण जाओ। अज्ञान बना संताम हरन उचे गम माओ, मन विछड़ा हरने दिए नानके सवाओ। सर्व कल्याण तित दिन पर हर पसी गर के पाओ, हर मेलिए नानक इस बना दूजी ना जाए न सूजिए कित कूकण जाओ। ज्ञान बना संताम हर उचे गम आओ, मन विछड़ा हर मेलिए नानक इस आओ। सर्व कल्याण सब कल्याण तत् दिन हर पासी गुर के पाओ। वाम वार माज की कसा सलोक हिला हिला मालक मालक मरी तथा चंद्र हरा सोया के गावन अंतरा सपना करता चरक गौर प्रसाद लोक महला पहला। गौर दाता गौर हिवे गौर दाता गौर हिवे कार गौर जीतक तहलोए। अमर पदार्थ नानका मन मान्या सुख होए, महला पहले पहले कर लगा थान दुध दूजे माए बाप की सद। तीजे पया पादी देव चौथे प्यार पुनी छेड़, पंजे खान पीन की तात छेवे काम पीछे जात। सतवें संग किया करवात अठवें क्रोध हुआ तन नाथ।

तुझा संसार महला पहला दास वासन विसरा तीसा का सुंदर कहावे चालीसा पर होए पचासी पाग से सठी को बुढ़ापा आवे सतर का मत ही न सिंहा व्यवहार न पावे नवे की सह जासनी मूल न जाने आप बाल टिडोल में टूंड में डिठा मैं नानक जग तू है का तबर हार पौड़ी तू करता परख गम है आप सृजित पाती रंग परंग उपार्जना बहु बहु बद पाती तू जाने जिन पाई है सब खेल समाती एक आवे एक जाए उठ बिन नामे मर जाती गौरम कर रंग चनूलिया रंग हर रंग राती सो सेवू सत निरंजनो हर पुरख वधाती तू आपे आप स्यान है बड़ा पुरख वधाती जो मन चित तुद त्याएंगे मेरे सच्चा बल बल हूँ तिन जाती लोक महला पहला जियो पाए तिन साजिया रख्या बणत बनाए अखी देखे जीवा बोले कन्नी सुत समाए पैरी चले अखी करना दिता पैने खाए जिन रच रचिया तिसे न जाने अंधा अंध कमाए जा भजे ता ठीक होवे घाट कड़ी न जाए नानक गौर बिन नाए पत पत गण पार न पाए महला दूजा दिन दे तामू दिता चंगा मन मुख ऐसा जानिए सुरत मत च कराई ताकी क्या करा खब खानिए अंतर वह के कर्म कमावे जो चौकुंडी जानिए जो धर्म कमावे तुझ धर्म ना होवे पाप कमाने पापी जानिए तू आपे गिल कराए सब करते क्या दूजा आख बखानिए जितर के ज्योत तितर ज्योति विच तू बोले बिन ज्योति कोई कछ करूँ दिखा सियाणिए नानक गुरमुख नगरी आया हर इको सुगुण सुझानिए पौड़ी तुद आपे जग तू पाए कह तुद आपे धंधे लाया मोट कोली पाए कह तुद आपे जगत को आया किसना अंदर अग्न है आप ना तेते भुख ते आया सैसा ए संसार है मर जमे आया जाया बिन सतगुर मोना तूती सब थक कर्म कमाया गुरमति नाम त्याईए सुख रजा जा तुद पाया कुल बारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत सुहावनी जन हर खेती चितला

सेवा नहीं सुख निवास, सतगुरु सेवा नहीं सुख निवास, फिर आइए दुनिया खोटी रात, दुनिया खोटी रात कूड कमाइए, नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाइए। श्लोक महला पहला। तुद पावे ता वाहे गावे, तुद पावे जल नहावे, जा तुद पावे ता करे प्रभुता सिंगी नाद बजावे, जा तुद पावे ता पढ़े कतेबा मुल्ला सेख कहावे, जा तुद पावे ता होवे राजे राष्ट्र का सबहत कुमावे, जा तुद पावे तेग बुगावे सिर मुंडी कट जावे, जा तुद पावे जाए दसंतर सुन गल्ला कर आवे, जा तुद पावे नान जा तुद पावे नाहिर चावे, तुद पाने तू पावे, नानक एक कहे बेनती होर सगले कूड कमावे। महला पहला। जा तू बड़ा सब बड़ियाइया चंगे चंगा होई, जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड कोई ना कोई, आखण देखण बोलण चलण जीवन मरना धात, हुक्म साज अपने विच रखे नानक सच्चा आप पौड़ी, सतगुरु सेवन संग परम चुकाइए, सतगुरु आखे कार सुकार कमाइए, सतगुरु होए ध्यान सा नाम त्याइए, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाइए, मन मुख कूड़ गुवार कूड कमाइए, सच्चे दे दर जाए सत चवाइए, सच्चे अंदर मैल सच बुलाइए, नानक सच सदा सत्यार सच समाइए। श्लोक महला पहला। कल काती राधे का साई, धर्म पंख कर उदारिया, कूड़म अमावस सच चंद्रमा दिसे नाहीं कह चाड़िया, हों पालग कुन्नी होई अंधेरे राह न कोई, बिच होमे कर दुख रोई को नानक कैन वेदगत होई। महला तीजा। कल कीरत परगत चानन संसार, गुरमुख कोई उतरे पार, जिसनो नदर करे तिस देवे, नानक गुरमुख रतन से ओ लेवे पौड़ी, भगता तै संसार सारिया जोड़क देना आया, करता आप भुल है ना भुले किसे दा भलाया, भगत आपे मिली नहीं सचो सच कमाया, सह सारी अपनी कूड़ बोल बोल भी सिखाया, चलन सार न जाने काम करो जिस बधाया, भगत करम हर चाकरी जिन अंदिन नाम ते आया, दासन दास होए कह जिन बिचों आप गवाया, उना खासमा के दर उना खासमा के धर्म खुजले सच्चे शब्द सुहाया। श्लोक महला पहला। सवाही सलाह जिनी त्याया, एक मन सोई पूरे साब वास्ते उपर लड़मुए, दूजे बहुते राम मन किया मती खिंडिया, बहुत पए असगा गोते खाए निकले, तीजे मुही करा भुख तिखा दोए भोंकिया, खादा होए सवा पी खाने सियों दोस्ती, चौथे आई ऊंग अखी मीट पर पावर गया, ती उठ रचियों बाद सह बरिया की पेड़ बदी, सबदे बेला बाक्त सब जे अठ पौ होए, नानक साहब मन वसे सच्चा नावण होए। महला दूजा। सोई पूरे सा जिनी पूरा पाया, अठी बेपरवार रहन एक ते रंग, दर्शन रूप था बैरले पाया, कर्म पूरे पुर गुरु पूरा जा का भोल, नानक पूरा जो करे कटे नाही तोल पौड़ी, जान तू ता क्या होर मैं सच सुनाइए, मुठ्ठी अंधे चोर मेरे न पाइए, इन्ने चित कठोर सेव गुआइए, जित घट सच न पाए तू पन कढ़ाइए, क्यों कर पूरे बट तोल तलाइए, कोय न आखे कट होने जाइए, लेन खरे परख दर बिनाइए, सौदा इक हट पूरे गुर पाइए। श्लोक महला दूजा। अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर, तिस विच नौ निध नाम एक पाले गुणी गहीर, करम बतीस लाया नानक कर गुर पीर, चौथे पैर सवा के सुत्या उपजे चाहू, सुत्या उपजे चाऊ तिना दरियावा त्यो दोस्ती, मन मुख सच्चा नाओ उथे अमृत वंडिए, करमी होए पसाओ कंचन काया।

हर आपे रब रह बनवारी हर आपे तप तप लय तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाऊ हर आपे शब्द सुरत दुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारंग अमृत तारा हर अमृत ताप पिया बनहारा हर आप करे आपे निस्तारा हर आपे बेड़ी तुलहा तारा हर आपे गुरमती निस्तारा हर आपे नानक पावे पारा गौड़ी वैरागण महला चौथा शाह हमारा तू धनी जैसी तू रास दे तैसी हम ले हर नाम बणन जय रंग स्याऊ जे आप दयाल हुए दे हम बण जारी राम की हर बणज करावे दे रास रे रहाऊ लाहा हर भगत तन खटिया हर सचे साच सचे शाह मन पाया हर जप हर वकर लद्या जम जागाती नेड़ न आया होर वणज करहे व्यापारी अनंत तरंगी दुख माया ज उए जे है वणज हर लाया फल तीहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करी जिस कृपाल होए प्रभ देई जन नानक शाह हर सेवया सिर लेखा मूल न लेई गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यो जननी प्रभ पालती सुतकी कर आसा वड्डा होए तन काट दे कर भोग बिलासा त्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गोसाइया जन की उपमा तुझे वडैया रहा ओ मंदर घर आनंद हर हर जस मन भावे सब रस मीठे मुख लगै जा हर गुण गावे हर जन परवार सुधार है इकी कुली सब जगत छुड़ावे जो कुछ किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपी वरताई लाला हाट ब्याजया क्या तिस जत राई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी कहो हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी गुआरी री महला चौथा किरसाणी किरसाण करे लोचै जियो लाए हल जोतै उदम करे मेरा पोती पोत ती खाए त्यों हर जन हर हर जप करी हर अंत छुड़ाई।

विषय संसार, अप्रिय काल कूड़ सिर मारे, निचल एक सच्चा सच सोई, जिन कर साजी तिन्हें सब गोई, ओ गुरमुख जापे ता पत होई, साजी देख देख सतीरा, वडे कहावे होमे तन पीरा, काल न छूटे बिन सतगुर की तीरा, काल जाजी वार नैनी, कानी काल सुने बिख बैणी, बिन चल दे मुठे दिन रैणी, हृदय सास वसै हर नाय, काल न जुहे सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गोड़ी महला पहला, बोले साध मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रचाई, रह अति सच्चे सरनाई, सच कर बैसे काल न जुहे, मनमुख आव जाव दुख मोए, राहु अपियो पियो कथ कथ रही है, निष्कर बैस सहज कर लही है, हर रस माते एहु सुख कही है, गुरमत चाल नीचल नहीं डोले, गुरमत साज सहज हर बोले, तीरे अमृत तत्त विरोले, सतगुर देख्या देख्या नीनी, मन तन अर्पयो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच जो अतार, जंदे खो तह एक ओंकार, रहे निरालम एका सच कारणी, परम पद पाया सेवा गुर जनी, ममते मन मान्य चुकी अंग परमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस तारिया, प्रपाए हम अवर ना पारिया, साज महल गुर अलख लखाया, निचल महल नहीं चाया माया, साज संतोख परम चकाया, जिनके मन बसिया सच सोए, जिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल कोई, गौड़ी महला पहला, राम नाम तित रापै जाका, उपजंत दर्शन की जय काका, राम नाम जपो अपाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभु राम हमारा, राव गुरमत राम जपै जन पूरा, दिसकट अनर बाजै तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, ते प्रभु राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श पारस सुख होई, सर्व जिया में एक और वह, मन मुख अहंकारी फिर जुनी पवै, सो बुझे जो सतगुर पाए, उमे मारे गुर शब्द दे पाए, अर्ध उर्ध की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन तरिए, सोलह अष्टपदियां ग्वारेरी गोड़ी पिया, गोड़ी बैरागन मल्ला पैला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों गाए को गोली, राख कर सारा एन फल राख ले, आत्म सुख सारा इत उत राखो दीन दयाला, रोशन नागर नंदन निहाला, राव जंदे को तारव रहे, रख राख नहारा, तू दाता पुरता तू है, तू प्राणे आधारा, किरत पया अद उर्दे, बिन ज्ञान विचारा, बिन उपमा जगदीश की बिन सेना अंधियारा, जग बिनसत हम देखिया लोभे अंकारा, गुर सेवा प्रपाया सच मुक्त द्वारा, निष्कर महल अपार को अपरंपर सोए, बिन सब गए फिर कोने, बुझे सुख हुई क्या ले आया ले जाए क्या, खास जम जाला डोल बदा सस जेवरी, आकाश पताला गुण स्नान विसर सजे पत पाइये, अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाइये, नदर तेरे पर में अपनी गुण अंक समावे, नानक मेल न चूकी लाह सच पावे, गौड़ी महला पहला गुर प्रसाद जी बुझ लै तो हुए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा, बिन गुर शब्द न छूटी है देखो विचारा, जेल कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा, राव अंधे अपनी बारे क्या तिन स्यों कहिया, बिन गुर पंथ न सूझे कित बिद निर बइये, खोटे को खरा कह खरे सार न जाने, अंधे का ना उपार तू कली काल बिठाने, सूते को जागत कहे जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे मुए नहीं रोता, आवत को जाता कहे जाते को आया, पर की को अपनी कहे अपनो नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कहे कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करे ऐसा कल मैं जीठा, तेरी की सेवा करे ठाकर नहीं दीसै, पोखर नीर बरोलिए माखन नहीं रीसै, इस पद जो अर्थाए ने सो गुरु मारा, नानक चिन्हे आपको सो अपरापारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर के पाते बुझिए सब ब्रह्म माया, रा गौड़ी द्वारेरी महला तीजा, पदियाँ एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पाओ, परमे फूले आ वो जाओ, मानो सूतक कभी ना जाए, जिचर शब्द ना दीजे हर कह नाए, राहो तब वो सूतक जीता मुँह आकार, मनमर जन्मे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जीता किश्च खाए, सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेविए सूतक जाए, मरी ना जन्मे काल ना खाए, साधु सिमरत सोध देखो कोए, बिना मैं को मुक्त ना होए, विचारे नाम उत्तम शब्द विचार, कर्मे गुरमुख सरस पार, सच्चा मरे ना आवे जाए, नानक गुरमुख रहे समाए, गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा।